गुरु सिख दा जीवन की है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने जिहड़ा गुरु दा सिख है, गुरु दी सिख्या लैके, गुरु दी दीख्या मन के, गुरु दा हुक्म मन के अपने जीवन नूं इस प्रकार ढाल लैंदा है, कहंदे ने फिर ओहदा स्वरूप, ओहदी रहनी बहनी, कहनी सहनी इस प्रकार हो जाती है।